0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्र

0: आमंत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज के मिलन से हम प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस, खुशी और आशा पर अपना चिंतन शुरू करेंगे, जिसके माध्यम द्वितीय वैटिकन महासभा एक मूलभूत विषय वस्तु पर व्याख्या करने की चाह रखती है, विशेष रूप से कलीसिया और आधुनिक दुनिया के बीच का संबंध। संत पापा जॉन 13वें ने, जैसे कि 11 अक्टूबर 1962 को अपने प्रारंभिक संबोधन में विनाश के नबियों के मुद्दों के बारे में सवाल किया, जो धर्म के प्रति उत्साह से भरे होते हुए भी यह घोषित करते हैं कि हमारा समय, जब हम उसे अतीत की सदियों से तुलना करते हैं, पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है, और वे अपने में ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उन्हें इतिहास से कुछ नहीं सीखना है। अतः धर्म सभा के आचार्यों का उत्तरदायित्व यह रहा, मानवीय घटनाओं की वर्तमान परिस्थिति में जहां मानवता एक नए क्रम की चीजों में प्रवेश करती जान पड़ती है, जहां हमें चाहिए कि हम बेहतर रूप में ईश्वर की दिव्य योजना पर चिंतन करें, जो मनुष्य के कार्यों द्वारा अपने समय में पूरा किए जाते हैं और बहुधा उनकी आशाओं से परे, और जो विवेक से हर चीज को सुव्यवस्थित करता है, यहाँ तक कि मानवीय विरोधाभावी क्रियाकलापों को भी, जो कलीसिया के हित में होती है। संत पापा लियो ने कहा कि 3 साल बाद गाउडियम एट स्पेस के प्रकाशन ने अपने आत्म मंथन में कलीसिया की एक महत्वपूर्ण प्रकृति को पहचाना, उसे अपनी प्रेरिताई की विशेषता स्वरूप वर्णन किया। अतः वह प्रेरिताई धर्म सिद्धांत स्वरूप परिभाषित की गई। हम इसे अनुभवहीन आशा के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि यह ख्रीस्त के रहस्य के प्रति एक नवीनतम निष्ठा है, जो शरीर धारण करते हुए हमारे जीवन को साझा करने का चुनाव करती है। अपने को सभी रूपों में अपने भाइयों के अनुरूप बना लिया और अपने ऊपर पापों का परिणाम ले सबों की मुक्ति हेतु मर गए। हमारी मानवता में उनकी यह सहभागिता वह मार्ग है जिसे ख्रीस्त कलीसिया को अनुसरण करने हेतु बुलाते हैं। अतः धर्म सभा का धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि कलीसिया वर्तमान समय के मानव की खुशियों और आशाओं, दुखों और चिंताओं को अपना बनाती है, विशेषकर वे जो दरिद्र हैं या किसी भी रूप में दुख से अपने को पीड़ित पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
1: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza.
0: यह हमारे लिए वह बुलावा है जहां हम सारे निष्क्रियता और उदासीनता का परित्याग करते हुए वर्तमान परिस्थिति की घटनाओं में, इतिहास और लोगों के जीवन में, विशेष करके उनके संग जो शीघ्रता और गहरे रूप में परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को साझा करते हैं। हम अपने में मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं, बल्कि हमें उन्हें अपने हृदय से सुनने की जरूरत है, अपने को उनके द्वारा चुनौती लेने और उनकी परिस्थितियों में शामिल करने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से पोषित विश्वासियों से यह मांग की जाती है कि वे अपने भाई बहनों के बोझों को अपने में वहन करें, विशेषकर उनकी जो अन्याय, भेदभाव और हिंसा के शिकार हैं। वास्तव में केवल अपने जीवन को साझा करने और निष्ठा के माध्यम हम हर संभावित प्रत्युत्तर दे सकते हैं, सदैव इस बात की निश्चितता में कि जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा, मानव की ओर हमारी निकटता हमारे लिए मार्ग को खोलता है, जहां हम घटनाओं के रहस्य को एक गहरे रूप में समझते हैं, और उसी तर्ज पर गाउडियम एट स्पेस इस बात की याद दिलाती है कि यह कलीसिया का निरंतर उत्तरदायित्व रहा है कि वह समय के संकेतों की जांच करे और उन्हें सुसमाचार के आलोक में परिभाषित करे। धर्म सभा का यह

0: सिद्धांत इस भांति हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया मन फिराव के मार्ग में निष्ठा से आगे बढ़ती है, इस बात का साक्ष्य देते हुए कि वह भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है, बल्कि एकल लक्ष्य की खोज करती है, जो पवित्र आत्मा के संग मित्रता में ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ाना है। और यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में सच्चाई का साक्ष्य देने हेतु आए, बचाने हेतु, ना कि न्याय करने को, सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में यह एक नैतिक कार्य मात्र नहीं है। संत पापा फ्रांसिस इसकी याद दिलाते हुए कहते हैं कि कलीसिया के लिए गरीबों के लिए विकल्प मुख्य रूप से एक ईश शास्त्रीय वैचारिक रूप है, न कि सांस्कृतिक, सामाजिक, शास्त्रीय, राजनीतिक या दार्शनिक। हम उनमें ख्रीस्त को पाने हेतु बुलाए गए हैं, अपनी आवाज को उनके कारणों हेतु बुलंद करने को, इसके साथ ही उनसे मित्र बनने के लिए, उन्हें सुनने, उनकी बातों को घोषित करने और उस रहस्यात्मक विवेक का आलिंगन करने के लिए जिसे ईश्वर हमारे लिए उनके माध्यम साझा करना चाहते हैं। संत पापा ने कहा,
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà.
0: ख्रिस्तीय एकता हमें निष्ठा में सच्चाई के संग संयुक्त होने को मदद करती और उसके साथ ही उन विरोधाभावों का खुलासा करती जो समकालीन दुनिया में हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति जो सदैव हमारे लिए कई संभावनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों के लिए, और जिसे मानव हमेशा अपने कल्याण के अधीन करने में सफल नहीं होता है, या समाज के नियमों की एक स्पष्ट समझ जो दिशा निर्देशन के संबंध में यद्यपि अनिश्चितताओं के संग चलती है, या पुनः धन संपत्ति और आर्थिक शक्ति की प्रचुरता जो दुर्भाग्यवश आज जैसे कि धर्म सभा के दिनों में भी था, विश्व की एक प्राप्त करने की आवश्यकता है जो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और अपने को क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना लिया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, खुशी और आशा गाउडियम एट स्पेस कलीसिया का एक विशिष्ट गुण बने जो हमारे समय के नर और नारियों के निकट आते हुए सुसमाचार को घोषित करती और उसका साक्ष्य देती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने 1 सितंबर को सृष्टि की

देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर रोम के कास्टल गंडोल्फो में स्थानीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे लाउदातो सी उद्यान में यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर आज की धर्म विधि के लिए लिए गए पाठ हमें ईश्वर की कृति पर चिंतन करने हेतु आमंत्रित करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ हमें सृष्टि की सुंदरता और इसकी शक्ति पर चिंतन करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम सृष्टिकर्ता की प्रशंसा कर सकें। अपनी निगाहों को सृष्टिकर्ता के आश्चर्य की ओर उन्मुख किए हमारे लिए अग्नि, वायु और कलकल करते झरने या आकाश के तारों के प्रति विस्मय व्यक्त करना व्यर्थ होगा। संत पापा ने कहा कि स्तोत्र 18 हमें अपनी आँखों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए चिंतन करने का आह्वान करता है, जो ईश्वर की महिमा घोषित करते हैं, और नभ जो ईश्वर के हाथों से किए गए कार्यों को घोषित करते हैं। सारी सृष्टि हमारे लिए सृजनहार की महानता का बखान करती है। यह केवल तब होता है जब हम अपनी आँखों और हृदयों को इस एक महान रहस्य के लिए खुला रखते हैं। संत पापा ने कहा, आज की शाम जब हम ईश्वर के कार्यों के सामने उनके ऊपर चिंतन करने हेतु उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हम सृष्टि के मौसम की शुरुआत करते हैं। 5 सप्ताह का यह समय जो हमारे लिए निष्ठा में आम घर की देखरेख हेतु प्रार्थना करने को समर्पित है, इस दिन और आने वाले सप्ताहों में, इसलिए आइए हम अपने को कुछ क्षणों के लिए दैनिक जीवन के कार्यों से अलग करें, जिससे हम उस गहरी एकता का रसास्वादन कर सकें जिसके हम सभी अंग हैं। हम अपने को उस शांति में स्थापित करें जहां कितनी ही शोर मानवीय कार्यों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे हम सृष्टि की मधुर आवाज को सुन सकें, जिसके माध्यम से ईश्वर सारी चीजों के निर्माता हमसे बातें करते हैं। सृष्टि के मौसम जिसकी शुरुआत आज कर रहे हैं 4 अक्टूबर को समाप्त होगी, जब हम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह मनाएंगे। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व पत्र लाउदातो सी प्रकाशित करते हुए उनसे एक विशेष प्रेरणा ली, जो बोर्गो को जीवन देती है, जो हमारा स्वागत करता है। संत फ्रांसिस के साथ उस वैश्विक भाईचारे को जीने और बढ़ावा देने की अपनी निष्ठा को फिर से दोहराएं, जो दुनिया की देखभाल के कार्य से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। उधर मौत की सजा पाए कैदियों के बीच अपनी प्रेरिताई का वर्णन करने वाले अमेरिकी लोकधर्मी चैपलिन डाले रेसिनेल्ला की पुस्तक मृत्यु दंड की सजा पाए एक क्रिस्तीय अब अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। संत पापा फ्रांसिस, जिन्होंने इस किताब के इटालियन संस्करण की प्रस्तावना लिखी थी, इस काम को ईश्वर की दया का एक मास्टरपीस बताया। श्री डाले रेसिनेल्ला की किताब फ्लोरिडा के मौत की सजा पाए कैदियों के बीच 2 दशकों से ज्यादा की प्रेरितिक सेवा का सीधा ब्यौरा देती है। इसे 29 जुलाई को इंचेंडियो प्रेस ने इंग्लिश में प्रकाशित किया। इटालियन संस्करण को वाटिकन पब्लिशिंग हाउस ने अगस्त 2024 में संत पापा फ्रांसिस की प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया था। श्री रेसिनेल्ला ने एक गहरी आध्यात्मिक प्रगति के बाद एक वित्तीय वकील के रूप में सफल व्यवसाय को छोड़ा। उन्होंने फ्लोरिडा में फांसी का इंतजार कर रहे कैदियों के लिए 20 साल से ज्यादा समय तक कैथोलिक लोकधर्मी चैपलिन के तौर पर सेवा दी। 2021 में जीवन के लिए परमधर्म पीठ संस्थान ने उनकी दशकों की सेवा के सम्मान में उन्हें अपना प्रथम जीवन रक्षक पुरस्कार दिया। किताब कैदियों से मुलाकात को दया के कामों में से एक के तौर पर याद करती है। यह बुलावा संत मती के सुसमाचार में क्रिस्त के शब्दों से जुड़ा है, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए। उधर संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने 2 बयानों के जरिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को लागू करने की मांग की है। इनके लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि सिद्धांतों, हथियारों के जखीरे और रणनीति फायदे की सोच के पीछे ऐसे लोग हैं जिनकी गरिमा कभी भी सैन्य या राजनीतिक फायदों के आगे कम नहीं हो सकती।
बढ़ते गुस्से वाले शब्द और काम डर के तर्क को बढ़ावा देते हैं, जबकि सिद्धांतों और हथियारों के जखीरे के पीछे ताकत की संस्कृति के शिकार लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं। उनकी गरिमा सैन्य और राजनीतिक फायदे के लिए बेच दी जाती है। यह स्थिति जिसे संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने पहचाना है और जिसे कल 1 सितंबर को इसके प्रभारी महाधर्माध्यक्ष रॉबर्ट मर्फी के दो बयानों में बताया गया, समय पर और असरदार कार्यवाही की मांग करती है। अपने भाषण में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की याद में उनकी खतरनाक विरासत को सख्ती से याद किया गया। हालांकि इससे यह आम धारणा और मजबूत नहीं हुई कि ज्यादा विनाशकारी हथियार बनाकर शांति नहीं रखी जा सकती। आज असल में हम परमाणु रोकथाम का नया सहारा और तेजी से बढ़ती परमाणु बयानबाजी देख रहे हैं, जो एकजुट अंतर्राष्ट्रीय नियम पर सवाल उठाती है। इस धारणा को संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में बताया था, जिसमें परमाणु हथियारों के निर्माण को धीरे धीरे छोड़ने को, पूरी इंसानियत को खत्म करने में काबिल हथियारों से होने वाले खतरे को पहचानना बताया गया था। उधर ईरान पर अमेरिका के नए हमलों में अब तक 18 लोग मारे गए हैं और 68 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा हमला दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में हुआ। पहली बार वाशिंगटन ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो ईरानी तेल टैंकरों पर भी हमला किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापालियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: फ्रेटेले सोरेले, बुनजोर्नो ए बेनवेनुति। Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज के मिलन से हम प्रेरितिक धर्म सिद्धांत Gaudium et Spes, खुशी और आशा पर अपना चिंतन शुरू करेंगे, जिसके माध्यम द्वितीय वैटिकन महासभा एक मूलभूत विषय वस्तु पर व्याख्या करने की चाह रखती है, विशेष रूप से कलिसिया और आधुनिक दुनिया के बीच का संबंध। संत पापा जॉन 13वें ने, जैसे कि 11 अक्टूबर 1962 को अपने प्रारंभिक संबोधन में विनाश के नबियों के मुद्दों के बारे में सवाल किया, जो धर्म के प्रति उत्साह से भरे होते हुए भी यह घोषित करते हैं कि हमारा समय, जब हम उसे अतीत की सदियों से तुलना करते हैं, पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है और वे अपने में ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उन्हें इतिहास से कुछ नहीं सीखना है। अतः धर्म सभा के आचार्यों का उत्तरदायित्व यह रहा, मानवीय घटनाओं की वर्तमान परिस्थिति में जहां मानवता एक नए क्रम की चीजों में प्रवेश करती जान पड़ती है, जहां हमें चाहिए कि हम बेहतर रूप में ईश्वर की दिव्य योजना पर चिंतन करें, जो मनुष्य के कार्यों द्वारा अपने समय में पूरा किए जाते हैं और बहुधा उनकी आशाओं से परे, और जो विवेक से हर चीज को सुव्यवस्थित करता है, यहाँ तक कि मानवीय विरोधाभावी क्रियाकलापों को भी, जो कलिसिया के हित में होती है। संत पापा लियो ने कहा कि 3 साल बाद Gaudium et Spes के प्रकाशन ने अपने आत्म मंथन में कलिसिया की एक महत्वपूर्ण प्रकृति को पहचाना, उसे अपनी प्रेरिताई की विशेषता स्वरूप वर्णन किया। अतः वह प्रेरिताई धर्म सिद्धांत स्वरूप परिभाषित की गई। हम इसे अनुभवहीन आशा के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि यह ख्रीस्त के रहस्य के प्रति एक नवीनतम निष्ठा है, जो शरीर धारण करते हुए हमारे जीवन को साझा करने का चुनाव करती है। अपने को सभी रूपों में अपने भाइयों के अनुरूप बना लिया और अपने ऊपर पापों का परिणाम ले सबों की मुक्ति हेतु मर गए। हमारी मानवता में उनकी यह सहभागिता वह मार्ग है जिसे ख्रीस्त कलिसिया को अनुसरण करने हेतु बुलाते हैं। अतः धर्म सभा का धर्म सिद्धांत Gaudium et Spes की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि कलिसिया वर्तमान समय के मानव की खुशियों और आशाओं, दुखों और चिंताओं को अपना बनाती है, विशेषकर वे जो दरिद्र हैं या किसी भी रूप में दुख से अपने को पीड़ित पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza.
1: यह हमारे लिए वह बुलावा है जहां हम सारे निष्क्रियता और उदासीनता का परित्याग करते हुए वर्तमान परिस्थिति की घटनाओं में, इतिहास और लोगों के जीवन में, विशेष करके उनके संग जो शीघ्रता और गहरे रूप में परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को साझा करते हैं। हम अपने में मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं, बल्कि हमें उन्हें अपने हृदय से सुनने की जरूरत है। अपने को उनके द्वारा चुनौती लेने और उनकी परिस्थितियों में शामिल करने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से पोषित विश्वासियों से यह मांग की जाती है कि वे अपने भाई बहनों के बोझों को अपने में वहन करें, विशेषकर उनकी जो अन्याय, भेदभाव और हिंसा के शिकार हैं। वास्तव में केवल अपने जीवन को साझा करने और निष्ठा के माध्यम हम हर संभावित प्रत्युत्तर दे सकते हैं, सदैव इस बात की निश्चितता में कि जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा, मानव की ओर हमारी निकटता हमारे लिए मार्ग को खोलता है, जहां हम घटनाओं के रहस्य को एक गहरे रूप में समझते हैं, और उसी तर्ज पर गाउडियम एट स्पेस इस बात की याद दिलाती है कि यह कलीसिया का निरंतर उत्तरदायित्व रहा है कि वह समय के संकेतों की जांच करे और उन्हें सुसमाचार के आलोक में परिभाषित करे। धर्म सभा का यह सिद्धांत इस भांति हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया मन फिराव के मार्ग में निष्ठा से आगे बढ़ती है, इस बात का साक्ष्य देते हुए कि वह भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है, बल्कि एकल लक्ष्य की खोज करती है, जो पवित्र आत्मा के संग मित्रता में ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ाना है। और यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में सच्चाई का साक्ष्य देने हेतु आए, बचाने हेतु, ना कि न्याय करने को, सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में यह एक नैतिक कार्य मात्र नहीं है। संत पापा फ्रांसिस इसकी याद दिलाते हुए कहते हैं कि कलीसिया के लिए गरीबों के लिए विकल्प मुख्य रूप से एक ईश शास्त्रीय वैचारिक रूप है, न कि सांस्कृतिक, सामाजिक, शास्त्रीय, राजनीतिक या दार्शनिक। हम उनमें ख्रीस्त को पाने हेतु बुलाए गए हैं, अपनी आवाज को उनके कारणों हेतु बुलंद करने को, इसके साथ ही उनसे मित्र बनने के लिए, उन्हें सुनने, उनकी बातों को घोषित करने और उस रहस्यात्मक विवेक का आलिंगन करने के लिए जिसे ईश्वर हमारे लिए उनके माध्यम साझा करना चाहते हैं। संत पापा ने कहा,
2: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà.
1: ख्रिस्तीय एकता हमें निष्ठा में सच्चाई के संग संयुक्त होने को मदद करती और उसके साथ ही उन विरोधाभावों का खुलासा करती जो समकालीन दुनिया में हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति जो सदैव हमारे लिए कई संभावनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों के लिए, और जिसे मानव हमेशा अपने कल्याण के अधीन करने में सफल नहीं होता है, या समाज के नियमों की एक स्पष्ट समझ जो दिशा निर्देशन के संबंध में यद्यपि अनिश्चितताओं के संग चलती है, या पुनः धन संपत्ति और आर्थिक शक्ति की प्रचुरता जो दुर्भाग्यवश आज जैसे कि धर्म सभा के दिनों में भी था, विश्व की एक बड़ी जनसंख्या को अब भी भूख और गरीबी में प्रताड़ित छोड़ देती है, या एक साझा सचेतना कि ब्रह्मांड का भविष्य खतरे में है, स्वार्थ में भौतिकता को छोड़ने की असमर्थता और यह भ्रम कि युद्ध अपने में शांति स्थापना का एक प्रभावकारी माध्यम है। संत पापा लियो चौदवी ने कहा कि बदलाव की इस बड़ी स्थिति में जो चिंताजनक असंतुलन को उत्पन्न करती है, कलीसिया मानव की सेवा करने और उनके हृदय में व्याप्त गहरे सवालों का स्वागत करने और उनकी चाहतों को सुनने हेतु बुलाई जाती है। ख्रीस्त जो मानव इतिहास के मुख्य केंद्र बिंदु और लक्ष्य हैं, इंगित करने को कही जाती है। अतः कलीसिया की हर परिस्थिति और हर स्तर में हमारे लिए ख्रीस्त के करुणामय दिव्य त्याग को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और अपने को क्रूस मरण तक आज्ञा

कार्य बना लिया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, खुशी और आशा गाउडियम एट स्पेस कलिसिया का एक विशिष्ट गुण बने, जो हमारे समय के नर और नारियों के निकट आते हुए सुसमाचार को घोषित करती और उसका साक्ष्य देती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर रोम के कास्टल गंडोल्फो में स्थानीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे लौदातो सी उद्यान में यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर आज की धर्म विधि के लिए लिए गए पाठ हमें ईश्वर की कृति पर चिंतन करने हेतु आमंत्रित करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ हमें सृष्टि की सुंदरता और इसकी शक्ति पर चिंतन करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम सृष्टिकर्ता की प्रशंसा कर सकें। अपनी निगाहों को सृष्टिकर्ता के आश्चर्य की ओर उन्मुख किए हमारे लिए अग्नि, वायु और कलकल करते झरने या आकाश के तारों के प्रति विस्मय व्यक्त करना व्यर्थ होगा। संत पापा ने कहा कि स्तोत्र 18 हमें अपनी आँखों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए चिंतन करने का आह्वान करता है, जो ईश्वर की महिमा घोषित करते हैं, और नभ जो ईश्वर के हाथों से किए गए कार्यों को घोषित करते हैं। सारी सृष्टि हमारे लिए सृजनहार की महानता का बखान करती है। यह केवल तब होता है जब हम अपनी आँखों और हृदयों को इस एक महान रहस्य के लिए खुला रखते हैं। संत पापा ने कहा, आज की शाम जब हम ईश्वर के कार्यों के सामने उनके ऊपर चिंतन करने हेतु उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हम सृष्टि के मौसम की शुरुआत करते हैं। 5 सप्ताह का यह समय जो हमारे लिए निष्ठा में आम घर की देखरेख हेतु प्रार्थना करने को समर्पित है, इस दिन और आने वाले सप्ताहों में, इसलिए आइए हम अपने को कुछ क्षणों के लिए दैनिक जीवन के कार्यों से अलग करें, जिससे हम उस गहरी एकता का रसास्वादन कर सकें जिसके हम सभी अंग हैं। हम अपने को उस शांति में स्थापित करें जहां कितनी ही शोर मानवीय कार्यों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे हम सृष्टि की मधुर आवाज को सुन सकें, जिसके माध्यम से ईश्वर सारी चीजों के निर्माता हमसे बातें करते हैं। सृष्टि के मौसम जिसकी शुरुआत आज कर रहे हैं 4 अक्टूबर को समाप्त होगी, जब हम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह मनाएंगे। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व पत्र लौदातो सी प्रकाशित करते हुए उनसे एक विशेष प्रेरणा ली, जो बोर्गो को जीवन देती है, जो हमारा स्वागत करता है। संत फ्रांसिस

इसके साथ उस वैश्विक भाईचारे को जीने और बढ़ावा देने की अपनी निष्ठा को फिर से दोहराएं, जो दुनिया की देखभाल के कार्य से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। उधर मौत की सजा पाए कैदियों के बीच अपनी प्रेरिताई का वर्णन करने वाले अमेरिकी लोकधर्मी चैपलिन डाले रेसिनेल्ला की पुस्तक मृत्युदंड की सजा पाए एक क्रिस्तिय अब अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। संत पापा फ्रांसिस, जिन्होंने इस किताब के इटालियन संस्करण की प्रस्तावना लिखी थी, इस काम को ईश्वर की दया का एक मास्टरपीस बताया। श्री डाले रेसिनेल्ला की किताब फ्लोरिडा के मौत की सजा पाए कैदियों के बीच दो दशकों से ज्यादा की प्रेरितिक सेवा का सीधा ब्यौरा देती है। इसे 29 जुलाई को इंचेंडियो प्रेस ने इंग्लिश में प्रकाशित किया। इटालियन संस्करण को वाटिकन पब्लिशिंग हाउस ने अगस्त 2024 में संत पापा फ्रांसिस की प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया था। श्री रेसिनेल्ला ने एक गहरी आध्यात्मिक प्रगति के बाद एक वित्तीय वकील के रूप में सफल व्यवसाय को छोड़ा। उन्होंने फ्लोरिडा में फांसी का इंतजार कर रहे कैदियों के लिए 20 साल से ज्यादा समय तक कैथोलिक लोकधर्मी चैपलिन के तौर पर सेवा दी। 2021 में जीवन के लिए परमधर्मपीठीय संस्थान ने उनकी दशकों की सेवा के सम्मान में उन्हें अपना प्रथम जीवन रक्षक पुरस्कार दिया। किताब कैदियों से मुलाकात को दया के कामों में से एक के तौर पर याद करती है। यह बुलावा संतमती के सुसमाचार में ख्रीस्त के शब्दों से जुड़ा है, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए। उधर संयुक्त राष्ट्र में परमधर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने दो बयानों के जरिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को लागू करने की मांग की है। इनके लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि सिद्धांतों, हथियारों के जखीरे और रणनीति फायदे की सोच के पीछे ऐसे लोग हैं जिनकी गरिमा कभी भी सैन्य या राजनीतिक फायदों के आगे कम नहीं हो सकती। बढ़ते गुस्से वाले शब्द और काम डर के तर्क को बढ़ावा देते हैं, जबकि सिद्धांतों और हथियारों के जखीरे के पीछे ताकत की संस्कृति के शिकार लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं। उनकी गरिमा सैन्य और राजनीतिक फायदे के लिए बेच दी जाती है। यह स्थिति जिसे संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने पहचाना है और जिसे कल 1 सितंबर को इसके प्रभारी महाधर्माध्यक्ष रॉबर्ट मर्फी के दो बयानों में बताया गया, समय पर और असरदार कार्यवाही की मांग करती है। अपने भाषण में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की याद में उनकी खतरनाक विरासत को सख्ती से याद किया गया। हालांकि इससे यह आम धारणा और मजबूत नहीं हुई कि ज्यादा विनाशकारी हथियार बनाकर शांति नहीं रखी जा सकती। आज असल में हम परमाणु रोकथाम का नया सहारा और तेजी से बढ़ती परमाणु बयानबाजी देख रहे हैं, जो एकजुट अंतर्राष्ट्रीय नियम पर सवाल उठाती है। इस धारणा को संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास में बताया था, जिसमें परमाणु हथियारों के निर्माण को धीरे धीरे छोड़ने को, पूरी इंसानियत को खत्म करने में काबिल हथियारों से होने वाले खतरे को पहचानना बताया गया था। उधर ईरान पर अमेरिका के नए हमलों में अब तक 18 लोग मारे गए हैं और 68 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा हमला दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में हुआ। पहली बार वाशिंगटन ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो ईरानी तेल टैंकरों पर भी हमला किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
3: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कातिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टि कर

0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: आध्यात्मिक गुलाब,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: दाऊद का गढ़,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: हस्तिदंत का गढ़,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्ण मंदिर,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: संधि की मंजूषा,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: भोर का तारा,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: रोगियों का स्वास्थ्य,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: पापियों की शरण,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: दुखियों का दिलासा,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: ख्रिस्तियों की सहायता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्गदूतों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: धर्म पुरखों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: नबियों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: प्रेरितों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शहीदों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: धर्मवीरों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: संतों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: अति पवित्र माला की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शांति की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।
0: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

बुद्धिमान के मुख से निकलने वाले शब्द प्रिय लगते हैं, किंतु मूर्ख की बातें उसके विनाश का कारण बनती हैं। उसके मुख से निकलने वाले शब्द मूर्खता से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन पदों की व्याख्या कर बताया था कि किस प्रकार उपदेशक प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाकर अपने श्रोताओं और पाठकों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है। मूर्ख व्यक्ति की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उपदेशक कहता है कि मूर्ख हर समय कुछ न कुछ बोला करता है, हालांकि उसके शब्दों में कोई तथ्य नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होता। मूर्ख को भविष्य का कोई अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वह बेधड़क कुछ भी बोलता चला जाता है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि क्या बोल रहा है। यह भी नहीं कि उसके शब्दों से अनर्थ हो सकता है, वह दिशाहीन और लक्ष्यहीन होता है। वह खुद अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता और भटक जाता है, जबकि बुद्धिमान के शब्द प्रिय लगते हैं, क्योंकि उससे किसी का अहित नहीं होता, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। आगे प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाने के उपरांत उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 16वें और 17वें पदों में उत्तम राजा का उल्लेख कर उपदेशक कहता है, उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, जिसके सामंत प्रातः काल से ही दावत उड़ाते हैं। धन्य है वह देश जिसका राजा कुलीन है, जिसके सामंत मतवाले बनने के लिए नहीं, बल्कि बल प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खाते और पीते हैं। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि राजा के बच्चे होने से तात्पर्य केवल उसकी उम्र से नहीं है, बल्कि उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, अर्थात जो अनुभवी नहीं है, जिसका ज्ञान बच्चे के सदृश सीमित है, जिसे पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, जिसका दिमाग परिपक्व नहीं है, वही बच्चा है, भले ही उसकी उम्र जो भी हो। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए तो उस देश पर शोक छा जाएगा, क्योंकि उसके अधीन काम करने वाले यदि मक्कार हुए तो वे उसके अज्ञान का लाभ उठाएंगे और काम करने के बजाय भोग विलास में अपना सारा समय व्यर्थ ही गंवा देंगे। इसके विपरीत यदि राजा कुलीन है, कुशल है, ज्ञानी है और वफादार भी, तो वह देश का कार्यभार उत्तम रीत से संभाल सकेगा और प्रजा के हित में काम कर सकेगा। उसके अधीन काम करने वाले भी उसी की तरह सब समय सजग और सचेत रहेंगे तथा देश की रक्षा को तत्पर रहेंगे। वे मतवाले बनने के लिए नहीं पिएंगे, बल्कि उचित समय पर खाएंगे और पिएंगे, ताकि समय पर बल प्राप्त कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। श्रोताओ, स्वयं राजा सुलेमान जब राज गद्दी पर बैठा था तब उसकी भी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए उसने प्रभु ईश्वर से समझदारी और विवेक की प्रार्थना की थी। प्रभु के वरदान के फल स्वरूप ही सुलेमान को भला और बुरा पहचानने का विवेक मिला था और वह न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन कर सका।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के अंतिम पदों का पाठ कर इन्हें समझने का प्रयास करें। ये शब्द इस प्रकार हैं, यदि कोई आलसी है तो उसकी छत बैठ जाती है, यदि उसके हाथ सुस्त हैं तो घर में पानी चूता है, लोग मन बहलाने के लिए भोजन करते और अंगूरी जीवन को आनंदपूर्ण बनाती है, किंतु धन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। आगे 20वें और अंतिम पद में उपदेशक कहता है, तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो और अपने शयन कक्ष में भी धनी को मत धिक्कारो, क्योंकि आकाश की कोई चिड़िया तुम्हारे शब्द उड़ा लेगी, कोई पंखदार जीव तुम्हारी बात प्रकट कर देगा। सबसे पहले तो श्रोताओं, उपदेशक आलस और आलसी की निंदा करता है, कहता है कि आलस की वजह से ही इमारत ध्वस्त हो जाती है, आलसी शासक देश को तहस नहस कर देता है, उसके रहने से लोग गरीब और दीन दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार घर का मालिक यदि आलसी हो तो संपूर्ण परिवार प्रताड़ित होता है, वह घर की परिवार की देखभाल करने में असमर्थ रहता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम नहीं होता और उस घर पर निर्धनता और मायूसी छा जाती है, वह घर की मरम्मत पर भी ध्यान नहीं देता और उसके घर की छत भी टूट जाती है, बारिश आने पर उसमें से पानी चूने लगता है और किसी को शरण प्रदान करने के लायक वह छत नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति आलसी तो हैं ही लेकिन मतलबी भी हैं, क्योंकि केवल अपनी मनमानी कर जीना चाहते हैं, उन्हें अन्यों की परवाह नहीं होती। फिर एक बुरे और ना समझ राजा के दुर्गुणों का उल्लेख कर उपदेशक सुलेमान धन भोजन और अंगूरी में जीवन यापन करने वाले शासकों को फटकार बताकर इस बात के प्रति सचेत करता है कि यदि यही उनका रवैया रहा तो शीघ्र ही वे अपना सर्वस्व खो बैठेंगे, वे अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और देश का सम्मान खो देंगे। फिर भी वह अपने पाठकों और सुनने वालों को परामर्श देता है कि व्यक्ति भले ही अकेले में ही क्यों न हो, वह किसी भी परिस्थिति में अपने राजा, अपने शासक, अपने मालिक या नियोजक की बुराई नहीं करे, क्योंकि ऐसा करने से राजा या प्रशासक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो बस राजा या प्रशासक के विरुद्ध बोलने वाले का। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप स्मरण दिलाते हैं कि कई बार कहा गया है कि राजाओं के कान लंबे होते हैं अथवा दीवारों और बाड़ों के भी कान होते हैं, और एक छोटी चिड़िया ने मुझे बताया ऐसी कहावत है जो कई संस्कृतियों में मिलती है, जिसमें एरिस्टोफेन्स की द बर्ड्स और प्राचीन हित्ती की राजधानी एल्कुहिरसा भी शामिल हैं। उपदेशक का परामर्श यही है कि किसी की बुराई मत करो, भले ही आप अकेले अपने शयन कक्ष में हों तब भी आप किसी की बुराई न करें, क्योंकि यदि किसी प्रकार आपकी बात शासक या मालिक के कान तक पहुंच जाएगी तो इससे आप ही का अहित हो सकता है। श्रोताओं, ईश्वर के समक्ष भी हमारे गलत कामों के बारे में यही सच है। ईश्वर अंतर्यामी है, वे सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए मनुष्य सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा झूठ और गलत का नहीं अपितु सदैव सत्य का साथ दे, सत्य के रास्ते पर चलता चला जाए।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 5 महादेशों से करीब 147 नवनियुक्त धर्माध्यक्ष वैटिकन प्रशिक्षण कोर्स में भाग ले रहे हैं, जिसमें मिशन, प्रेरितिक कार्य, सुरक्षा, धर्म विधि एवं कलीसिया के प्रशासन इत्यादि विषयों पर बात होंगी और इसका समापन पोप लियो 14वें के साथ मुलाकात से होगा। नवनियुक्त धर्माध्यक्षों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कोर्स 2 से 10 सितंबर तक रोम में आयोजित किया गया है। धर्माध्यक्षों के लिए बने विभाग और सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित यह कोर्स नए धर्माध्यक्षों को प्रशिक्षण, प्रार्थना, बातचीत और भाईचारे का अनुभव करने का मौका देता है। साथ ही आज कलीसिया के सामने आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियों का हल करना सिखाता है। इस साल प्रशिक्षण कोर्स में कुल 147 धर्माध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इनमें से 98 धर्माध्यक्षों के लिए बने परमधम पीठे विभाग द्वारा आयोजित कोर्स में शामिल हो रहे हैं, जिसका शीर्षक है मसीह में परिवर्तन के समय में मणिपिका ओमानितास के संरक्षक, जबकि 49 धर्माध्यक्ष सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु है कलीसिया में सहभागिता के सेवक। इस कार्यक्रम में कई तरह के टॉपिक शामिल हैं, जैसे धर्माध्यक्षों की प्रेरिताय, धर्म विधि, मिशन, सांस्कृतिक बदलाव, दुर्व्यवहार के मामलों को संभालना और उनकी सुरक्षा, कलीसिया का प्रशासन, कलीसियाई कानून, अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत, नए धार्मिक आंदोलन, पुरोहितों का प्रशिक्षण और पुरोहितों के सामने आने वाली चुनौतियां। धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग का कोर्स 2 सितंबर को दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुष्ठान के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल आर्थर रोश के भाषण के साथ शुरू हुआ। यह कार्यक्रम पोप लियो 14वें से मुलाकात के साथ समाप्त होगा, जिसमें प्रशिक्षण, प्रार्थना और भाईचारे के विषयों पर बात होगी, जो धर्माध्यक्ष प्रेरिताई की तैयारी के लिए अवसर होगा। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को इटली के मोलफेत्ता में पियूस 11वें रीजनल सेमिनरी और अवेरसा के धर्माध्यक्ष सेमिनरी के छात्रों से मुलाकात की और उनसे कहा कि सेमिनरी अनुभव का केंद्र बिंदु है गुरु येसु के साथ रहने सीखना। पोप लियो 14वें ने इटली के 2 सेमिनरी, पुलिया के मोलफेत्ता में पियूस 11वें रीजनल सेमिनरी और कंपानिया के अवेसा के धर्माध्यक्ष सेमिनरी के छात्रों को दिए अपने भाषण में येसु के साथ सेमिनरी के छात्रों के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित किया। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि पढ़ाई, अनुशासन और यात्रा के चरण प्रशिक्षण के जरूरी हिस्से हैं, लेकिन इसका आधार ईश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। संत मार्कुस रचित सुसमाचार पाठ के अनुसार 12 प्रेरितों के बारे चिंतन करते हुए पोप लियो ने सेमिनरी के अनुभव के बारे बताया, जिसकी शुरुआत येसु के साथ रहने के लिए पहाड़ पर चढ़ने से होती है। उन्होंने कहा, हम ख्रिस्त तक पहुंच सकते हैं और सबसे बढ़कर उनके साथ रह सकते हैं, जिसे पोप ने सेमिनरी अनुभव का केंद्र बिंदु बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि प्रेरितों की तरह येसु लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रेरिताई के लिए बुलाते हैं। येसु ने उन्हें अपने पास बुलाया जिन्हें वे चाहते थे, यानी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ पिता ईश्वर की इच्छा से, एक ऐसे प्रेम के चिन्ह और प्रतिज्ञा के द्वारा जो हमेशा हमारा इंतजार करते हैं और कभी निराश नहीं करते। पोप ने पुरोहिताई की पढ़ाई कर रहे सेमिनरी छात्रों से कहा कि सेमिनरी में उनकी उपस्थिति ही पूरी कलीसिया के लिए उम्मीद की निशानी है। उन्होंने कहा, जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं ईश्वर के आश्चर्य के बारे में सोचता हूँ, जो युवाओं के दिल में उनके और कलीसिया के लिए अपनी जान देने के सुसमाचार के बारे बतलाने से नहीं थकते। उन्होंने आगे कहा कि सेमिनरी आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। साथ ही उन्होंने समुदाय की अहमियत पर जोर दिया।

याद करते हुए कि यीशु ने प्रेरितों को एक समुदाय के रूप में बुलाया था, जैसे आज सेमिनरी छात्रों को एक समुदाय में बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सेमिनरी छात्रों को प्रभु के साथ पूरी तरह से व्यक्तिगत यात्रा के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि उन्हें कलीसिया में हमेशा मध्यस्थता की सुंदरता को महसूस करना और अनुभव करना चाहिए। अंत में पोप लियो ने कहा, सेमिनरी के प्रशिक्षण में पहाड़ से नीचे आना भी शामिल है, क्योंकि पहाड़ कोई शरण नहीं है। प्रेरितों की तरह सेमिनरी छात्रों को भी दुनिया को जीवन की नई चीज बताने के लिए बुलाया जाता है, जिससे उन्होंने यीशु में पाया है। उन्होंने कहा, इसलिए आपको पहाड़ से नीचे उतरने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि आपको अपने देश के लोगों के पास भेजा जा सके। पोप ने उन्हें खुद को मरियम को सुपुर्द करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें हर दिन यीशु को हाँ कहने की कृपा मिल सके। संत पापा ने वक्तव्य के अंत में सेमिनरी छात्रों और उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद दिया। अरब क्षेत्र के लातिनी रीति के धर्मदर्शों से मुलाकात करते हुए पोप लियो चौदहवें ने कलीसिया से अपील की कि वह गरीबों के प्रति एकजुटता के साथ संघर्ष एवं विभाजन का सामना करे और इस बात का साक्ष्य दे कि साथ रहना और उम्मीद रखना संभव है। पोप लियो चौदहवें ने गुरुवार को अरब क्षेत्रों के लातिनी धर्मदक्ष सम्मेलन के सदस्यों से मुलाकात की, जो रोम में अपनी वार्षिक मीटिंग में भाग ले रहे हैं। अपने भाषण में पोप ने माना कि बिशप एक बड़े और अलग अलग तरह के क्षेत्र में फैले स्थानीय कलीसियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और अक्सर ऐसे हालात में सेवा करते हैं जहाँ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव होते हैं। उन्होंने कहा कि इन कलीसियाओं ने शहादत की गवाही देखी है और उन कई पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों की ओर इशारा किया जिन्होंने इराक, सीरिया और दूसरे संघर्ष वाले देशों में विश्वास के लिए अपनी जान दे दी है। पोप लियो ने कहा, कलीसिया के नेताओं को अपने लोगों के करीब रहना चाहिए, उनकी बात सुनने और उन्हें दिलासा देकर उनके घावों को चंगा करने की कोशिश करना चाहिए। पोप लियो चौदहवें ने कोलंबिया के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात की और देश में हाल ही में आए भूकंप के बाद अपनी एकजुटता दिखाई। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार पोप लियो चौदहवें ने बुधवार को कोलंबिया गणराज्य के राष्ट्रपति एबलार्दो दे ला एस्प्रेला से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान पोप ने 10 अगस्त को कोलंबिया में आए भयंकर भूकंप के नतीजों से जूझ रहे सभी लोगों के प्रति अपनी करीबी जताई। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

मुख से निकलने वाले शब्द प्रिय लगते हैं, किंतु मूर्ख की बातें उसके विनाश का कारण बनती हैं। उसके मुख से निकलने वाले शब्द मूर्खता से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कर उपदेशक कहता है, उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, जिसके सामंत प्रातः काल से ही दावत उड़ाते हैं। धन्य है वह देश जिसका राजा कुलीन है, जिसके सामंत मतवाले बनने के लिए नहीं बल्कि बल प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खाते और पीते हैं। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि राजा के बच्चे होने से तात्पर्य केवल उसकी उम्र से नहीं है, बल्कि उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, अर्थात जो अनुभवी नहीं है, जिसका ज्ञान बच्चे के सदृश सीमित है, जिसे पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, जिसका दिमाग परिपक्व नहीं है, वही बच्चा है, भले ही उसकी उम्र जो भी हो। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए तो उस देश पर शोक छा जाएगा, क्योंकि उसके अधीन काम करने वाले यदि मक्कार हुए तो वे उसके अज्ञान का लाभ उठाएंगे और काम करने के बजाय भोग विलास में अपना सारा समय व्यर्थ ही गंवा देंगे। इसके विपरीत यदि राजा कुलीन है, कुशल है, ज्ञानी है और वफादार भी, तो वह देश का कार्यभार उत्तम रीत से संभाल सकेगा और प्रजा के हित में काम कर सकेगा। उसके अधीन काम करने वाले भी उसी की तरह सब समय सजग और सचेत रहेंगे तथा देश की रक्षा को तत्पर रहेंगे। वे मतवाले बनने के लिए नहीं पिएंगे बल्कि उचित समय पर खाएंगे और पिएंगे, ताकि समय पर बल प्राप्त कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। श्रोताओं, स्वयं राजा सुलेमान जब राज गद्दी पर बैठा था तब उसकी भी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए उसने प्रभु ईश्वर से समझदारी और विवेक की प्रार्थना की थी। प्रभु के वरदान के फल स्वरूप ही सुलेमान को भला और बुरा पहचानने का विवेक मिला था और वह न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन कर सका।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के अंतिम पदों का पाठ कर इन्हें समझने का प्रयास करें। ये शब्द इस प्रकार हैं, यदि कोई आलसी है तो उसकी छत बैठ जाती है, यदि उसके हाथ सुस्त हैं तो घर में पानी चूता है, लोग मन बहलाने के लिए भोजन करते और अंगूरी जीवन को आनंद पूर्ण बनाती है, किंतु धन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। आगे 20वें और अंतिम पद में उपदेशक कहता है, तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो और अपने शयन कक्ष में भी धनी को मत धिक्कारो, क्योंकि आकाश की कोई चिड़िया तुम्हारे शब्द उड़ा लेगी, कोई पंखदार जीव तुम्हारी बात प्रकट कर देगा। सबसे पहले तो श्रोताओं, उपदेशक आलस और आलसी की निंदा करता है, कहता है कि आलस की वजह से ही इमारत ध्वस्त हो जाती है, आलसी शासक देश को तहस नहस कर देता है, उसके रहने से लोग गरीब और दीन दुखी हो जाते हैं,

इसी प्रकार घर का मालिक यदि आलसी हो तो संपूर्ण परिवार प्रताड़ित होता है। वह घर की परिवार की देखभाल करने में असमर्थ रहता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम नहीं होता और उस घर पर निर्धनता और मायूसी छा जाती है। वह घर की मरम्मत पर भी ध्यान नहीं देता और उसके घर की छत भी टूट जाती है। बारिश आने पर उसमें से पानी चूने लगता है और किसी को शरण प्रदान करने के लायक वह छत नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति आलसी तो हैं ही, लेकिन मतलबी भी हैं, क्योंकि केवल अपनी मनमानी कर जीना चाहते हैं। उन्हें अन्यों की परवाह नहीं होती। फिर एक बुरे और ना समझ राजा के दुर्गुणों का उल्लेख कर उपदेशक सुलेमान धन, भोजन और अंगूरी में जीवन यापन करने वाले शासकों को फटकार बताकर इस बात के प्रति सचेत करता है कि यदि यही उनका रवैया रहा तो शीघ्र ही वे अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। वे अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और देश का सम्मान खो देंगे। फिर भी वह अपने पाठकों और सुनने वालों को परामर्श देता है कि व्यक्ति भले ही अकेले में ही क्यों न हो, वह किसी भी परिस्थिति में अपने राजा, अपने शासक, अपने मालिक या नियोजक की बुराई नहीं करे, की बुराई न करें, क्योंकि यदि किसी प्रकार आपकी बात शासक या मालिक के कान तक पहुंच जाएगी तो इससे आप ही का अहित हो सकता है। श्रोताओं, ईश्वर के समक्ष भी हमारे गलत कामों के बारे में यही सच है। ईश्वर अंतर्यामी हैं, वे सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए मनुष्य सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा झूठ और गलत का नहीं, अपितु सदैव सत्य का साथ दे, सत्य के रास्ते पर चलता चला जाए।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 5 महादेशों से करीब 147 नवनियुक्त धर्माध्यक्ष वैटिकन प्रशिक्षण कोर्स में भाग ले रहे हैं, जिसमें मिशन, प्रेरित कार्य, सुरक्षा, धर्म विधि एवं कलीसिया के प्रशासन इत्यादि विषयों पर बात होंगी और इसका समापन पोप लियो 14वें के साथ मुलाकात से होगा। नवनियुक्त धर्माध्यक्षों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कोर्स 2 से 10 सितंबर तक रोम में आयोजित किया गया है। धर्माध्यक्षों के लिए बने विभाग और सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित यह कोर्स नए धर्माध्यक्षों को प्रशिक्षण, प्रार्थना, बातचीत और भाईचारे का अनुभव करने का मौका देता है। साथ ही आज कलीसिया के सामने आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियों का हल करना सिखाता है।

हैं। इस साल प्रशिक्षण कोर्स में कुल 147 धर्माध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इनमें से 98 धर्माध्यक्षों के लिए बने परम धर्म पीठ विभाग द्वारा आयोजित कोर्स में शामिल हो रहे हैं, जिसका शीर्षक है मसीह में परिवर्तन के समय में मणिपिका ओमानितास के संरक्षक। जबकि 49 धर्माध्यक्ष सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु है कलीसिया में सहभागिता के सेवक। इस कार्यक्रम में कई तरह के टॉपिक शामिल हैं, जैसे धर्माध्यक्षों की प्रेरिताएं, धर्म विधि, मिशन, सांस्कृतिक बदलाव, दुर्व्यवहार के मामलों को संभालना और उनकी सुरक्षा, कलीसिया का प्रशासन, कलीसियाई कानून, अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत, नए धार्मिक आंदोलन, पुरोहितों का प्रशिक्षण और पुरोहितों के सामने आने वाली चुनौतियां। धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग का कोर्स 2 सितंबर को दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुष्ठान के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल आर्थर रोश के भाषण के साथ शुरू हुआ। यह कार्यक्रम पोप लियो 14वें से मुलाकात के साथ समाप्त होगा, जिसमें प्रशिक्षण, प्रार्थना और भाईचारे के विषयों पर बात होगी, जो धर्माध्यक्ष प्रेरिताई की तैयारी के लिए अवसर होगा। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को इटली के मोलफेत्ता में पियूस 11वें रीजनल सेमिनरी और अवेरसा के धर्माध्यक्ष सेमिनरी के छात्रों से मुलाकात की और उनसे कहा कि सेमिनरी अनुभव का केंद्र बिंदु है गुरु येसु के साथ रहने सीखना। पोप लियो 14वें ने इटली के 2 सेमिनरी, पुलिया के मोलफेत्ता में पियूस 11वें रीजनल सेमिनरी और कंपानिया के अवेसा के धर्माध्यक्ष सेमिनरी के छात्रों को दिए अपने भाषण में येसु के साथ सेमिनरी के छात्रों के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित किया। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि पढ़ाई, अनुशासन और यात्रा के चरण प्रशिक्षण के जरूरी हिस्से हैं, लेकिन इसका आधार ईश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। संत मार्कुस रचित सुसमाचार पाठ के अनुसार 12 प्रेरितों के बारे चिंतन करते हुए पोप लियो ने सेमिनरी के अनुभव के बारे बताया, जिसकी शुरुआत येसु के साथ रहने के लिए पहाड़ पर चढ़ने से होती है। उन्होंने कहा, हम ख्रिस्त तक पहुंच सकते हैं और सबसे बढ़कर उनके साथ रह सकते हैं, जिसे पोप ने सेमिनरी अनुभव का केंद्र बिंदु बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि प्रेरितों की तरह येसु लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रेरिताई के लिए बुलाते हैं। येसु ने उन्हें अपने पास बुलाया जिन्हें वे चाहते थे, यानी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ पिता ईश्वर की इच्छा से, एक ऐसे प्रेम के चिन्ह और प्रतिज्ञा के द्वारा जो हमेशा हमारा इंतजार करते हैं और कभी निराश नहीं करते। पोप ने पुरोहिताई की पढ़ाई कर रहे सेमिनरी छात्रों से कहा कि सेमिनरी में उनकी उपस्थिति ही पूरी कलीसिया के लिए उम्मीद की निशानी है। उन्होंने कहा, जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं ईश्वर के आश्चर्य के बारे में सोचता हूँ, जो युवाओं के दिल में उनके और कलीसिया के लिए अपनी जान देने के सुसमाचार के बारे बतलाने से नहीं थकते। उन्होंने आगे कहा कि सेमिनरी आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। साथ ही उन्होंने समुदाय की अहमियत पर जोर दिया, यह याद करते हुए कि येसु ने प्रेरितों को एक समुदाय के रूप में बुलाया था, जैसे आज सेमिनरी छात्रों को एक समुदाय में बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सेमिनरी छात्रों को प्रभु के साथ पूरी तरह से व्यक्तिगत यात्रा के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि उन्हें कलीसिया में हमेशा मध्यस्थता की सुंदरता को महसूस करना और अनुभव करना चाहिए। अंत में पोप लियो ने कहा, सेमिनरी के प्रशिक्षण में पहाड़ से नीचे आना भी शामिल है, क्योंकि पहाड़ कोई शरण नहीं है। प्रेरितों की तरह सेमिनरी छात्रों को भी दुनिया को जीवन की नई चीज बताने के लिए बुलाया जाता है, जिससे उन्होंने येसु में पाया है। उन्होंने कहा, इसलिए आपको पहाड़ से नीचे उतरने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि आपको अपने देश के लोगों के पास भेजा जा सके। पोप ने उन्हें खुद को मरियम को सुपुर्द करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें हर दिन येसु को हाँ कहने की कृपा मिल सके। संत पापा ने वक्तव्य के अंत में सेमिनरी छात्रों और उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद दिया। अरब क्षेत्र के लातिनी रीति के धर्माध्यक्षों से मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने कलीसिया से अपील की कि वह गरीबों के प्रति एकजुटता के साथ संघर्ष एवं विभाजन का सामना करे और इस बात का साक्ष्य दे कि साथ रहना और उम्मीद रखना संभव है। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को अरब क्षेत्रों के लातिनी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के सदस्यों से मुलाकात की, जो रोम में अपनी वार्षिक मीटिंग में भाग ले रहे हैं। अपने भाषण में पोप ने माना कि बिशप एक बड़े और अलग अलग तरह के क्षेत्र में फैले स्थानीय कलीसियाओं का मार्गदर्शन करते हैं
और अक्सर ऐसे हालात में सेवा करते हैं जहां राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव होते हैं। उन्होंने कहा कि इन कलीसियाओं ने शहादत की गवाही देखी है और उन कई पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों की ओर इशारा किया जिन्होंने इराक, सीरिया और दूसरे संघर्ष वाले देशों में विश्वास के लिए अपनी जान दे दी है। पोप लियो ने कहा, कलीसिया के नेताओं को अपने लोगों के करीब रहना चाहिए, उनकी बात सुनने और उन्हें दिलासा देकर उनके घावों को चंगा करने की कोशिश करना चाहिए। पोप लियो 14वें ने कोलंबिया के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात की और देश में हाल ही में आए भूकंप के बाद अपनी एकजुटता दिखाई। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार पोप लियो 14वें ने बुधवार को कोलंबिया गणराज्य के राष्ट्रपति एबलार्दो दे ला एस्प्रेला से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान पोप ने 10 अगस्त को कोलंबिया में आए भयंकर भूकंप के नतीजों से जूझ रहे सभी लोगों के प्रति अपनी करीबी जताई। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।